0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका अति आत्मविश्वास। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, हम सभी का जीवन एक बहती नदी के समान है। जीवन रूपी नदी हमेशा एक ही स्पीड में नहीं बहती, कभी धीमी तो कभी तेज बहाव रहते हैं। एक सफल इंसान वह होता है जो जीवन की गति को पहचानता है और उसी के अनुसार खुद को आगे बढ़ाता है ताकि सफलता हासिल की जा सके। और सफलता का मूल मंत्र है आत्मविश्वास। बिना आत्मविश्वास के कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर किसी में अति आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस हो तो यह बहुत घातक और धीरे धीरे सब कुछ समाप्त कर देने वाला होता है। कोई व्यक्ति अति आत्मविश्वास का शिकार है तो इसे हम इन बातों से पता लगा सकते हैं। अति आत्मविश्वासी समझता है कि वह सब कुछ जानता है, वह सही गलत में फर्क नहीं कर पाता, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी ही बात पर अड़ा रहता है। वह सोचता है कि वह गलत हो ही नहीं सकता और गलत कार्यों को सही मानकर करता चला जाता है और असफलता ही उसके हाथ लगती है। इस असफलता की जिम्मेदारी वह खुद पर नहीं लेता बल्कि इसका दोष किसी और पर मढ़ देता है। ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास में से अति को निकालने के लिए परिवार वालों, सच्चे मित्रों का मार्गदर्शन चाहिए जो उसे चुनौती दे सकें और धीरे से वह अपनी असफलताओं से सीखकर अति को जीवन से निकाल सकता है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका अति आत्मविश्वास।
1: अगले महीने याद है ना, बिट्टू की शादी में चलना है।
2: अगला महीना तो आने दो, फिर देखेंगे जाना भी है या नहीं।
1: अरे कैसी बातें करते हैं आप भी, मैं किसी पराए की शादी की बात कर रही हूँ क्या? आखिर मेरे जेठ और आपके बड़े भाई का बेटा है बिट्टू, बिट्टू की शादी की बात कर रही थी।
2: ठीक है होने तो दो, चलेंगे।
3: हाँ पापा जरूर चलेंगे, खूब मजा आएगा। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि अपने परिवार में किसी की शादी नहीं निकल रही है, अब बिट्टू भैया की शादी निकली है तो खूब मजा करेंगे।
1: देखो ना, देखते देखते ही आज बिट्टू शादी के लायक हो गया है, एक कंपनी में मैनेजर भी हो गया है।
2: मगर एक हमारे रवि को देख लो तुम, क्या कर पाया आज तक वह, पढ़ लिख कर भी, उसे आज तक एक ढंग की नौकरी भी नहीं मिली।
3: पापा परसों फिर उसका एक जगह इंटरव्यू है।
1: हाँ मुझसे भी कह तो रहा था कि कहीं पर उसका इंटरव्यू है,
2: मगर मुझे तो बताया नहीं उसने।
3: भैया सोचता होगा कि शायद जब सिलेक्शन हो जाएगा तब फाइनल ही बताएगा।
1: मगर फिर भी मीनल, उसे तुम्हारे पापा को तो बताना ही चाहिए था ना।
2: चलो नीता, उसने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मगर इंटरव्यू के लिए उसकी तैयारी वगैरह तो चल रही है ना।
1: कर तो रहा होगा तैयारी।
3: कोई नहीं मम्मी, भैया कह रहा था कि वो कोई तैयारी नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर के जॉब की भी क्या तैयारी करना, ऐसे ही कुछ।
1: अरे फिर भी कुछ तैयारी तो उसे करनी चाहिए ना।
2: बिल्कुल करना चाहिए, वरना वहाँ उससे कुछ पूछा जाएगा तो क्या बगले झांकेगा वो।
3: भैया का कहना है कि उसे आइडिया है कि वे लोग उससे क्या क्या पूछेंगे और उसे सब कुछ आता है।
1: अरे इतना ओवर कॉन्फिडेंस,
2: अति आत्मविश्वास। नीता हमारे बेटे में इतना अधिक आत्मविश्वास अच्छा नहीं है।
3: मैंने भी भैया से यही कहा था पापा, लेकिन उसने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहने लगा कि मैं इतना गया बीता नहीं हूँ, मैं भी नॉलेज रखता हूँ। सचमुच पापा, भैया बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है।
2: शायद उसे पता नहीं बेटा कि ऐसे लोग जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं, उनका अति आत्मविश्वास ही उनको ले डूबता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, रवि बेटे को कुछ तो तैयारी करनी ही चाहिए। कहाँ है वो?
3: मम्मा वो उसका कोई फ्रेंड आया था, उसी के साथ कहीं गया है।
1: इस लड़के ने तो हद कर दी भाई, नौकरी क्या ऐसे ही मिल जाती है क्या?
2: इसी से पता चलता है कि हमारे बेटे को नौकरी करने और उसे पाने की कितनी लगन है।
3: सही है पापा, भैया हर इंटरव्यू कॉल को बहुत ही राइटली ले लेता है, हर बार यही कहता है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है और अपने ऊपर, ये नौकरी मुझे ही मिलेगी।
1: और मिलता क्या है उस लड़के को?
2: मैंने कहा तो है कि उस जैसे अति आत्मविश्वास वाले को कुछ भी नहीं मिला करता। वो आए तो उससे कहना मुझसे बातें करे।
1: एक तो वो घर में टिकता भी नहीं।
2: किसी भी हालत में घर तो आएगा। शाम हो गई, रवि अब तक नहीं आया या अपने कमरे में सो रहा?
3: अभी तक तो नहीं आया पापा।
2: ये लड़का भी आवारा हो गया लगता है औरों की तरह।
3: पापा, भैया आ रहा है।
2: रुको रवि, बैठो यहाँ।
4: कहिए पापा।
1: क्यों बेटा, तुमने पापा को नहीं बताया कि परसों तुम्हारा इंटरव्यू है?
4: अब उसमें बताने जैसा क्या है मम्मी, नौकरी मिल जाएगी तो खुद ही बता दूंगा ना।
2: मगर इंटरव्यू भी तो नौकरी पाने की पहली सीढ़ी है ना बेटा। तो फिर
4: इंटरव्यू का क्या है पापा, अब तक कितने तो इंटरव्यू दे चुका हूँ मैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है मुझे अब तो इंटरव्यू देने का।
2: अब तक तुम सिर्फ इंटरव्यू देने का ही अनुभव जमा करते रहे हो, कभी नौकरी पा लेने का अनुभव भी हुआ है तुम्हें?
4: नौकरी पाने का अनुभव तो नौकरी पाकर ही होगा ना पापा।
2: और नौकरी मिलती है इंटरव्यू की तैयारी करने से।
4: अब नौकरी के इंटरव्यू की क्या तैयारी करूं पापा, कितने तो इंटरव्यू दे चुका हूं मैं, सब एक जैसा ही पूछते हैं।
2: कभी कभी अलग भी पूछा जाता है, क्योंकि कंपनी और लोग अलग होते हैं, वे अपनी कंपनी या उससे जुड़ी बातों को जानना चाहते हैं।
4: पापा ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं तैयारी कर लेता हूँ, वैसे भी इंटरव्यू परसों है।
1: जा बेटा, आराम से तैयारी कर। देखो अब तो गुस्सा थूक दो, कह रहा है कर लेगा तैयारी।
2: वो तुम्हें बहला सकता है, मुझे नहीं। रवि कहाँ है नीता?
3: भैया मुंह धोकर आ रहा है।
1: इस लड़की ने उस दिन इंटरव्यू में क्या हुआ बताया ही नहीं।
2: वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ।
1: हाँ बेटा, उस दिन कैसा रहा इंटरव्यू?
2: अच्छा ही रहा होगा, इसे ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही।
4: सॉरी पापा, मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं रहा।
2: क्यों क्यों अच्छा नहीं रहा तुम्हारा इंटरव्यू? तुमने तो मेरे कहे अनुसार तैयारी भी खूब की होगी, नहीं क्या?
4: नहीं पापा, मैंने आपको टालने के लिए आपको झूठ कहा था, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी।
1: तो फिर पापा से झूठ बोलने का कारण?
3: वही हतिया आत्मविश्वास।
4: हाँ पापा, काश मैं आपकी बात मान लेता और अपने अति आत्मविश्वास में न होता तो जरूर मेरा भी सिलेक्शन हो जाता पापा।
2: तुम्हारे साथ आए उम्मीदवारों ने तो तैयारी की थी या वे भी तुम्हारी तरह ही अति आत्मविश्वास से भरे हुए थे?
4: नहीं पापा, उनमें से लगभग सभी ने इंटरव्यू देने की पूर्ण तैयारी कर रखी थी।
2: देखो बेटा, अब तुम्हें एहसास हो गया होगा कि मैं गलत नहीं कह रहा था, अति आत्मविश्वास हमेशा व्यक्ति को ले डूबता है।
1: हाँ बेटा, तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं, क्योंकि अति आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं करता और ना ही करना चाहता है, क्योंकि उसे तो ये गुमान होता है कि मुझे कुछ भी पहले से करने की क्या जरूरत है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ।
2: बेटा, जीवन में आत्मविश्वास का होना अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास का होना किसी भूल में रहना ही कहा जाएगा।
3: सुन लिया भैया?
4: मुझे इंटरव्यू में अपनी नाकामी से अच्छा सबक मिल गया है पापा। अब मैंने आज के बाद यह ठान लिया है कि आत्मविश्वास बनाए रखूंगा, लेकिन अति आत्मविश्वास से हमेशा दूर रहूंगा। अपनी नाकामी से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है।
2: इसी को कहते हैं बेटा, जब जागे तब सवेरा।
0: अति आत्मविश्वास। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे आस्था उपमन्यु, पीटर जमरा, अंतरा करवड़े और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

allgemeine Befehle. Freudige Zustimmung der

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत यूक्रेन में रहने वाले सिस्टर लीजी पया पिल्ली का साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। हम हर दिन डरते हुए सोते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि मिसाइल या ड्रोन कब आ जाएंगे। हर सुबह हम जागने के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं और हर शाम हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम जिंदा बच गए। ये थे सिस्टर लीजी पया पिल्ले के शब्द, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे 21वीं सदी में भी दूसरे विश्व युद्ध की याद दिलाने वाले दृश्य देखेंगी। संत जोसेफ ऑफ सेंट मार्क की धर्म बहन सिस्टर लीजी पया पिल्ले असल में भारत की हैं, लेकिन लगभग 25 साल पहले अपने मिशन के लिए यूक्रेन आई थी। वे यूक्रेनी लोगों के साथ पूरी तरह घुल मिल गई हैं। ट्रांसकार्पेथिनिया के पाओशिनो गांव में सिस्टर लीजी अपने धम्मसंघ के मठ में आध्यात्मिक बातचीत और मध्यस्थ प्रार्थना के लिए लोगों का स्वागत करती हैं। अपनी प्रार्थना के लिए लोकप्रिय सिस्टर लीजी को पूरे यूक्रेन में कैथोलिक और गैर कैथोलिक दोनों तरह के श्रद्धालु जानते हैं। समय समय पर वे यूक्रेन की दूसरे पलियों और विदेशों में भी जाती हैं, जहां उन्हें आध्यात्मिक साधना का संचालन करने के लिए बुलाया जाता है। वैटिकन न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में सिस्टर लीजी ने हमले के खिलाफ अपने देश की रक्षा में प्रार्थना के महत्व पर चिंतन किया और युद्ध से जूझ रहे देश में सच्ची आजादी के अर्थ पर प्रकाश डाला। अपनी प्रेरिताई के बारे बतलाते हुए सिस्टर लीजी अपने धर्मसंघ के करिश्मे की ठोस अभिव्यक्ति पर जोर देती हैं कि वह पौत्र यूखरिस्त की आराधना और सुसमाचार प्रचार है। सिस्टर लीजी कहती हैं, जब मैं आराधना में समय व्यतीत करती हूँ तो मैं यूखरिस्त के लिए अपना स्नेह प्रकट करती हूँ और चाहती हूँ कि दूसरे भी इसे प्यार करें और इसका स्वागत करें। उनका मिशन ईश्वर की जीवित उपस्थिति के उनके व्यक्तिगत साक्ष्य में निहित है। वे कहती हैं, मैं अपने अनुभव के द्वारा सुसमाचार प्रचार करती हूँ। प्रभु ने मेरे जीवन का स्पर्श किया है और मेरे लिए वे जीवित हैं। यूखरिस्त हमारे बीच ईश्वर की उपस्थिति है और मैं इस सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि ट्रांसकार्पेथिनिया के पाओशिनो में मठ उनकी प्रेरिताई के मूल संदर्भ बिंदु हैं, लेकिन सिस्टर का काम कॉन्वेंट से कहीं आगे तक फैला हुआ है। आध्यात्मिक सलाह लेने वाले हजारों भक्तों को जगह ना दे पाने की वजह से सिस्टर लीजी को पलियों से मिले बुलावे पर पूरे यूक्रेन एवं विदेश में भी घूमना पड़ता है। महामारी से पहले मठ में एक ही दिन में 700 तक लोग आते थे। आज आगंतुकों के आने जाने को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने के लिए एक अपॉइंटमेंट सिस्टम शुरू किया गया है, जिससे सिस्टर हफ्ते में 3 दिन भक्तों को समय और ध्यान दे पाती हैं। सिस्टर लीजी कहती हैं, युद्ध के दौरान अब मठ के दरवाजे पर दस्तक देने वालों के चेहरे बदल गए हैं। हाल में जो लोग आ रहे हैं वे ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के सदस्य गायब हैं। वे ऐसी माताएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है या ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा हो गई हैं। हमारे लिए यह हमारी सेवा का एक कीमती पहलू है। जो लोग पीड़ित हैं उन्हें दिलासा देने, सहारा देने और उनके लिए प्रार्थना करने का मौका। अग्रिम पंक्ति पर रहने वालों के बलिदान को समझने की इच्छा से सिस्टर लीजी ट्रांसकार्पेथिया छोड़कर युद्ध से अधिक प्रभावित इलाकों में जाना चाहें। 2016 में उनका मिशन उन्हें मारियोपोल और डोनेस्क ले गया, जहां 2022 में रूस के बड़े पैमाने पर हमले की शुरुआत के बाद से वे पीड़ित लोगों के जख्मों को खुद देखने की आवश्यकता महसूस की। बम के नीचे रहने वालों और सिर्फ दूर से प्रार्थना करने वालों के बीच की दूरी को कम करने के लिए टेलीविजन की तस्वीरें अब काफी नहीं थी। देश के उत्तर में सुमी में और बाद में दक्षिण पूर्व में जापोरिजा में बिशप जॉन सोविलो के बुलावे पर धम बहनने वह देखा जो अक्सर मीडिया कवरेज से बच जाता है। हजारों लोग ब्रेड का एक टुकड़ा और खाने का एक डिब्बा पाने के लिए लाइन में खड़े होंगे। सिस्टर लेजी की कहानी तब और दर्दनाक हो जाती है जब वे उन लोगों की बातें याद करती हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। लोग उन्हें बताते हुए कहते हैं, हमारे पास जमीन थी, हमारे पास एक घर था, हमने कभी नहीं सोचा था कि जीवन हमें रोटी के लिए भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। निप्रो में रहने के दौरान सिस्टर लेजी ने विश्वासियों के दैनिक जीवन में शामिल होने का फैसला किया और उनके साथ गुजरते ड्रोन और मिसाइलों के होने वाले डर का अनुभव करने की कोशिश की। मिलिट्री अस्पताल का दौरा करते हुए सिस्टर लेजी बहुत दुखी हुई। वे कहती हैं, सच कहूं तो मैं चुप रह गई। जो कुछ मैंने देखा उसके सामने मेरे पास शब्द नहीं थे। उनके सामने ऐसे जवान युवक थे, शायद 35 या 40 साल के, जिन्हें नकली अंगों के सहारे चलने सीखना पड़ा या ऐसे हाथ से पकड़ना पड़ा जो उनके नहीं थे। सिस्टर समझ गई कि उन्होंने अपने पैर और हाथ खो दिए हैं। खेरसोन में एक भी घर सही सलामत नहीं बचा है। सिस्टर लेजी यूक्रेन के असली हीरो से मिली। सुनसान सड़कों पर ड्रोन का खतरा हमेशा बना रहता है। दम्भन बताती हैं कि जब वे मिस्सा में भाग ले रहे थे तो इतने कम समय में 20 ड्रोन उनके ऊपर से उड़े। पल्ली पुरोहित फादर मैक्सिम ने उनसे बचने के उपाय समझाए। जब आप ड्रोन देखें तो आपको पेड़ के नीचे भागना होगा, क्योंकि वे लोगों का पता लगाने के लिए कैमरों का इस्तेमाल करते हैं और छोटे विस्फोटक या बम गिराते हैं। लेकिन आपको पेड़ों के नीचे भी सावधान रहना होगा। एक खतरनाक बम पत्तियों के बीच या किसी छोड़े हुए बैग के अंदर छिपा हो सकता है। तनाव और पानी की कमी के बावजूद सिस्टर लेजी कहती हैं वे लोगों के जोश से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें उम्मीद थी कि वहां रहने वाले लोग शिकायतें करेंगे और निराश होंगे, लेकिन इसके बजाय उन्हें ईश्वर का शुक्रिया अदा करते देख वे कहती हैं, हमारी ताकत प्रार्थना है। हमें नहीं पता कि कल हम जिंदा रहेंगे या नहीं, लेकिन हम जीते हैं और हम एक यूक्रेनी के रूप में बनना चाहते हैं। जब पूछा गया कि इतने खतरनाक माहौल में भी आध्यात्मिकता और प्रार्थना करना क्यों जरूरी है, तो सिस्टर लेजी ने धर्म ग्रंथ का जिक्र करते हुए कहा, जैसा कि संत पॉलुस ने एफेसियों को लिखे पत्र में लिखा है, हमारी लड़ाई खून पसीने के खिलाफ नहीं बल्कि बुरी आत्माओं के खिलाफ है। अंधेरा अपने आप में मौजूद नहीं है, यह बस रोशनी का नहीं होना है। युद्ध से जुड़ी हर चीजें, नफरत, हत्या, तबाही और गुस्सा एक बुरी आत्मा का फल है। जो लोग इस तरह काम करते हैं वे इसके साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए प्रार्थना यूक्रेनी लोगों के अंदर विरोध के लिए सबसे अहम हथियार है। यीशु ने पहले ही दुनिया जीत ली है, लेकिन बुरी आत्मा हमें यह यकीन दिलाकर धोखा देने की कोशिश करती है कि उसके पास समाप्त करने की ताकत है। असल में ताकत सिर्फ ख्रिस्त की है, ताकि हम पवित्र आत्मा को अपने द्वारा काम करने दे सकें। श्रोताओं, रवि फारे कार्यक्रम के अंतर्गत यूक्रेन में रह रही सिस्टर लेजी पया पिल्ले का अनुभव सुन रहे थे और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका अति आत्मविश्वास। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओं, हम सभी का जीवन एक बहती नदी के समान है। जीवन रूपी नदी हमेशा एक ही स्पीड में नहीं बहती, कभी धीमी तो कभी तेज बहाव रहते हैं। एक सफल इंसान वह होता है जो जीवन की गति को पहचानता है और उसी के अनुसार खुद को आगे बढ़ाता है ताकि सफलता हासिल की जा सके। और सफलता का मूल मंत्र है आत्मविश्वास। बिना आत्मविश्वास के कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर किसी में अति आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस हो तो यह बहुत घातक और धीरे धीरे सब कुछ समाप्त कर देने वाला होता है। कोई व्यक्ति अति आत्मविश्वास का शिकार है तो इसे हम इन बातों से पता लगा सकते हैं। अति आत्मविश्वासी समझता है कि वह सब कुछ जानता है, वह सही गलत में फर्क नहीं कर पाता, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी ही बात पर अड़ा रहता है। वह सोचता है कि वह गलत हो ही नहीं सकता और गलत कार्यों को सही मानकर करता चला जाता है और असफलता ही उसके हाथ लगती है। इस असफलता की जिम्मेदारी वह खुद पर नहीं लेता बल्कि इसका दोष किसी और पर मढ़ देता है। ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास में से अति को निकालने के लिए परिवार वालों, सच्चे मित्रों का मार्गदर्शन चाहिए जो उसे चुनौती दे सकें और धीरे से वह अपनी असफलताओं से सीखकर अति को जीवन से निकाल सकता है। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस की लिखी नाटिका अति आत्मविश्वास।
1: अगले महीने याद है ना, बिट्टू की शादी में चलना है।
2: अगला महीना तो आने दो, फिर देखेंगे जाना भी है या नहीं।
1: अरे कैसी बातें करते हैं आप भी, मैं किसी पराए की शादी की बात कर रही हूँ क्या? आखिर मेरे जेठ और आपके बड़े भाई का बेटा है बिट्टू, बिट्टू की शादी की बात कर रही थी।
2: ठीक है होने तो दो, चलेंगे।
3: हाँ पापा जरूर चलेंगे, खूब मजा आएगा। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि अपने परिवार में किसी की शादी नहीं निकल रही है, अब बिट्टू भैया की शादी निकली है तो खूब मजा करेंगे।
1: देखो ना, देखते देखते ही आज बिट्टू शादी के लायक हो गया है, एक कंपनी में मैनेजर भी हो गया है।
2: मगर एक हमारे रवि को देख लो तुम, क्या कर पाया आज तक वह, पढ़ लिख कर भी, उसे आज तक एक ढंग की नौकरी भी नहीं मिली।
3: पापा परसों फिर उसका एक जगह इंटरव्यू है।
1: हाँ मुझसे भी कह तो रहा था कि कहीं पर उसका इंटरव्यू है,
2: मगर मुझे तो बताया नहीं उसने।
3: भैया सोचता होगा कि शायद जब सिलेक्शन हो जाएगा तब फाइनल ही बताएगा।
1: मगर फिर भी मीनल, उसे तुम्हारे पापा को तो बताना ही चाहिए था ना।
2: चलो नीता, उसने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मगर इंटरव्यू के लिए उसकी तैयारी वगैरह तो चल रही है ना।
1: कर तो रहा होगा तैयारी।
3: कोई नहीं मम्मी, भैया कह रहा था कि वो कोई तैयारी नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर के जॉब की भी क्या तैयारी करना, ऐसे ही कुछ।
1: अरे फिर भी कुछ तैयारी तो उसे करनी चाहिए ना।
2: बिल्कुल करना चाहिए, वरना वहाँ उससे कुछ पूछा जाएगा तो क्या बगले झांकेगा वो।
3: भैया का कहना है कि उसे आइडिया है कि वे लोग उससे क्या क्या पूछेंगे और उसे सब कुछ आता है।
1: अरे इतना ओवर कॉन्फिडेंस,
2: अति आत्मविश्वास। नीता हमारे बेटे में इतना अधिक आत्मविश्वास अच्छा नहीं है।
3: मैंने भी भैया से यही कहा था पापा, लेकिन उसने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहने लगा कि मैं इतना गया बीता नहीं हूँ, मैं भी नॉलेज रखता हूँ। सचमुच पापा, भैया बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है।
2: शायद उसे पता नहीं बेटा कि ऐसे लोग जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच पाते हैं, उनका अति आत्मविश्वास ही उनको ले डूबता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, रवि बेटे को कुछ तो तैयारी करनी ही चाहिए। कहाँ है वो?
3: मम्मा वो उसका कोई फ्रेंड आया था, उसी के साथ कहीं गया है।
1: इस लड़के ने तो हद कर दी भाई, नौकरी क्या ऐसे ही मिल जाती है क्या?
2: इसी से पता चलता है कि हमारे बेटे को नौकरी करने और उसे पाने की कितनी लगन है।
3: सही है पापा, भैया हर इंटरव्यू कॉल को बहुत ही राइटली ले लेता है, हर बार यही कहता है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है और अपने ऊपर, ये नौकरी मुझे ही मिलेगी।
1: और मिलता क्या है उस लड़के को?
2: मैंने कहा तो है कि उस जैसे अति आत्मविश्वास वाले को कुछ भी नहीं मिला करता। वो आए तो उससे कहना मुझसे बातें करे।
1: एक तो वो घर में टिकता भी नहीं।
2: किसी भी हालत में घर तो आएगा।

0: हो गया है मुझे अब तो इंटरव्यू देने का।
1: अब तक तुम सिर्फ इंटरव्यू देने का ही अनुभव जमा करते रहे हो, कभी नौकरी पा लेने का अनुभव भी हुआ है तुम्हें?
0: नौकरी पाने का अनुभव तो नौकरी पाकर ही होगा ना पापा।
1: और नौकरी मिलती है इंटरव्यू की तैयारी करने से।
0: अब नौकरी के इंटरव्यू की क्या तैयारी करूं पापा, कितने तो इंटरव्यू दे चुका हूं मैं, सब एक जैसा ही पूछते हैं।
1: कभी कभी अलग भी पूछा जाता है, क्योंकि कंपनी और लोग अलग होते हैं, वे अपनी कंपनी या उससे जुड़ी बातों को जानना चाहते हैं।
0: पापा ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं तैयारी कर लेता हूं, वैसे भी इंटरव्यू परसों है।
2: जा बेटा आराम से तैयारी कर, देखो अब तो गुस्सा थूक दो, कह रहा है कर लेगा तैयारी।
1: वो तुम्हें बहला सकता है, मुझे नहीं। रवि कहाँ है? नीता,
3: भैया मुंह धोकर आ रहा है।
2: इस लड़की ने उस दिन इंटरव्यू में क्या हुआ बताया ही नहीं।
1: वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ।
2: हाँ बेटा उस दिन कैसा रहा इंटरव्यू?
1: अच्छा ही रहा होगा, इसे ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही।
0: सॉरी पापा मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं रहा।
1: क्यों क्यों अच्छा नहीं रहा तुम्हारा इंटरव्यू? तुमने तो मेरे कहे अनुसार तैयारी भी खूब की होगी, नहीं क्या?
0: नहीं पापा मैंने आपको टालने के लिए आपको झूठ कहा था, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी।
2: तो फिर पापा से झूठ बोलने का कारण?
3: वही हतिया आत्मविश्वास।
0: हाँ पापा, काश मैं आपकी बात मान लेता और अपने अति आत्मविश्वास में न होता तो जरूर मेरा भी सिलेक्शन हो जाता पापा।
1: तुम्हारे साथ आए उम्मीदवारों ने तो तैयारी की थी, या वे भी तुम्हारी तरह ही अति आत्मविश्वास से भरे हुए थे?
0: नहीं पापा, उनमें से लगभग सभी ने इंटरव्यू देने की पूर्ण तैयारी कर रखी थी।
1: देखो बेटा, अब तुम्हें एहसास हो गया होगा कि मैं गलत नहीं कह रहा था। अति आत्मविश्वास हमेशा व्यक्ति को ले डूबता है।
2: हाँ बेटा तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं, क्योंकि अति आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं करता और ना ही करना चाहता है, क्योंकि उसे तो ये गुमान होता है कि मुझे कुछ भी पहले से करने की क्या जरूरत है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ।
1: बेटा, जीवन में आत्मविश्वास का होना अच्छी बात है, लेकिन अति आत्मविश्वास का होना किसी भूल में रहना ही कहा जाएगा।
3: सुन लिया भैया?
0: मुझे इंटरव्यू में अपनी नाकामी से अच्छा सबक मिल गया है पापा। अब मैंने आज के बाद यह ठान लिया है कि आत्मविश्वास बनाए रखूंगा, लेकिन अति आत्मविश्वास से हमेशा दूर रहूंगा। अपनी नाकामी से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है।
1: इसी को कहते हैं बेटा, जब जागे तब सवेरा।
4: अति आत्मविश्वास। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे आस्था उपमन्यु, पीटर जमरा, अंतरा करवड़े और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विंटे।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: विनोम अवृत करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पवित्र कार्तिक कलीसिया धर्मियों के संबंध पापों की क्षमा देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
1: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के दूसरा भेद, माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं।
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुमारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

0: से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे,
1: क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमेन।
0: पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो चौदहवें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत होता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान पोप लियो 14वें ने यीशु के दो रास्तों पर चिंतन किया जो ख्रिस्तियों को आपसी प्रेम में जीने के लिए आमंत्रित करते हैं। पहला भ्रातृपूर्ण सुधार और दूसरा एक दूसरे को भाई एवं बहन की तरह प्यार करना। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 6 सितंबर को पोप लियो 14वें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
0: प्रिय भाई एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione.
0: ईश वचन जिसको इस रविवार की धर्म विधि में घोषित किया गया हमें सोचने और कार्य करने के लिए एक मौलिक मानदंड प्रदान करता है। रोमियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं कि सभी आज्ञाओं का सार इन शब्दों में है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। संत पापा ने कहा,
1: San Paolo insiste su questo punto.
0: संत पौलुस एक प्रभावशाली छवि के द्वारा इस बिंदु पर जोर देते हैं जो प्रभु की प्रार्थना में भी दिखाई देता है। वे लिखते हैं, भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी के ऋणी ना बने।
1: Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti.
0: यीशु ने हमें माफ मांगना और माफ देना सिखाया है, फिर भी एक ऐसा कर्ज है जो हम एक दूसरे के प्रति निभाते हैं जो हमें गुलाम नहीं बनाता, वह है आपसी प्रेम का कर्ज। हमें जो भी ध्यान, देखभाल और अच्छाई मिली है वह हमें अधिक स्वतंत्र और जिम्मेदारी उठाने के काबिल बनाती है। इस रविवार के सुसमाचार पाठ में यीशु हर ख्रिस्ती समुदाय को आपसी प्रेम के दो तरीके बताते हैं। पहला, भाईचारे के साथ सुधार करने के काबिल बनना। संत पापा ने कहा कि यह एक नाजुक कला है जिससे अक्सर भुला दिया जाता है, जिसके लिए स्पष्टता और धीरे धीरे आगे बढ़ने की जरूरत होती है। एक दूसरे से ईमानदारी से बात करना होता है, पहले आमने सामने, फिर अगर जरूरी हो तो दो या तीन और लोगों के साथ, और अगर आवश्यक हो तो अंत में पूरे समुदाय के साथ। इसका मतलब है सच्चाई का सामना करना और समस्याओं और झगड़ों को आगे बढ़ने के अवसर में बदलना। संत पापा ने कहा, शिकायत करना और दूसरों की बुराई करना आसान है, लेकिन उनसे कुछ हासिल नहीं होता और कई हालात बेकार हो जाते हैं। इसके बजाय सुसमाचार हमें वह स्वतंत्रता सिखाता है जो दया से मिलती है। प्रेम करने के दूसरे रास्ते पर प्रकाश डालते हुए संत पापा ने कहा,
1: C'è poi un secondo modo di amare fraternamente.
0: भाइयों और बहनों की तरह एक दूसरे से प्यार करने का एक दूसरा तरीका भी है जिसके कारण यीशु हमारी प्रार्थना को भी बदल देते हैं। वे एक समझौते पर पहुंचने की सलाह देते हैं। यह सिर्फ तब नहीं जब कोई झगड़ा ना हो, बल्कि तब भी जब ईश्वर से कोई वरदान मांग रहे हों। प्रभु कहते हैं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से दो व्यक्ति एकमत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। यह प्रतिज्ञा हमें सुझाव देती है कि हमारी इच्छाएं, दुख और उम्मीदें एक जैसी हो सकती हैं और प्रार्थना से हम एकता में बढ़ सकते हैं। विश्वास के बिना हर कोई अकेला महसूस करता है और दूसरों पर शक करने लगता है, उन्हें अजनबी और दुश्मन समझ सकता है, लेकिन कृपा से हम भाई बहन बनते हैं, मिलजुल कर रह सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे को माफ कर सकते हैं और प्रभु में एक दूसरे को सुन सकते हैं। तब माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए संत पापा ने कहा,
1: Chiediamo a Maria che dopo l'annuncio dell'angelo raggiunse in fretta la cugina Elisabetta.
0: आइए हम माता मरियम से प्रार्थना करें जो दूत समाद पाकर शीघ्रता से अपनी कुटुम्बनी एलिजाबेथ के पास चली गई थी कि उन्हें गर्भ धारण करने की खुशी एवं कठिनाई साझा कर सकें। हमें भी भ्रातृ प्रेम के साथ आनंदमय ऋण चुकाना सिखाएं। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने दुनिया भर की विभिन्न घटनाओं की याद की और पीड़ितों को अपनी सहानुभूति प्रदान की। सबसे पहले उन्होंने यूक्रेन के निर्दोष नागरिकों को भारी मन से याद किया जो लगातार हमले के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा,
1: Un animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina.
0: मैंने बहुत भारी मन से यूक्रेन के कई शहरों और नागरिक संरचनाओं पर विगत दिनों हुए हिंसक हमलों की खबरें सुनी हैं, जिनमें बेगुनाह लोगों की मौत हुई है। रूस ने गर्मी में यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए हैं, जिसके शिकार आम नागरिक हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन में रूसी मिसाइल एवं ड्रोन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक हैं। हालांकि रूस का दावा है कि हमले मिलिट्री को टारगेट करके किए गए हैं, लेकिन हाल के हमलों ने बड़े आबादी वाले इलाकों में अपार्टमेंट बिल्डिंग, प्राइवेट घर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट रास्तों को बर्बाद कर दिए हैं। पोप ने यूक्रेन के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा,
1: Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione.
0: मेरा दिल उन लोगों की तकलीफों के लिए दुखी है जो सालों से पीड़ा और डर में जी रहे हैं। मैं एक बार फिर अपील करता हूँ कि हिंसा खत्म की जाए, तबाही रोकी जाए, बातचीत और शांति के लिए दिल खोला जाए। फिर उम्मीद जताते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि हाल के दिनों में बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिश ठोस नतीजे पर आएगी और कूटनीति का रास्ता खोलेगी। उन्होंने पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा,
1: Eleviamo la nostra preghiera al Signore.
0: आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि दुनिया के सभी झगड़ों पर सद्भाव प्रबल हो। तत्पश्चात संत पापा ने रोम तथा विभिन्न देशों से आए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया और यहाँ आने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: Auguro a tutti una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। धन्या कुमारी मरियम के जन्म के त्योहार के एक दिन पहले आज शाम 7 सितंबर को संत पापा लियो 14वें रोम से करीब 40 किलोमीटर दूर अगुस्टीनियनों के पसंदीदा पवित्र स्थान जेनासानो में भली सलाहकारिणी माँ मरियम के गिरजाघर में पवित्र मिसा समारोह का अनुष्ठान करेंगे। संत पापा परमाध्यक्ष बनने के दो दिन बाद 10 मई 2025 को वहां पहुंचे थे। जेनासानो के पियासा देल पाचे में शाम 4:30 बजे संत पापा के आने की उम्मीद है और वे एक पापा मोबाइल से श्राइन पहुंचेंगे। रास्ते में भक्तों को आशीर्वाद देंगे। इसके बाद महागिरजाघर के सामने संत पापा का स्वागत स्थानीय अधिकारियों, अगुस्टीनियन समुदाय और तिवोली और पालेस्त्रीना धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष मौरो परमेजानी करेंगे। जेनासानो में खुशी का माहौल है। लोग बेसब्री से संत पापा लियो 14वें के आने का इंतजार कर रहे हैं, जो इस छोटे से शहर में अगुस्टीनियन परिवार की सबसे प्यारी जगहों में से एक है। और संत पापा लियो 14वें ने शनिवार शाम 5 सितंबर को वाटिकन उद्यान में होने वाले सालाना पारिवारिक समारोह के दौरान सैकड़ों वाटिकन कर्मचारियों और उनके परिवारों से मुलाकात की। सचिवालय प्रांगण में इकट्ठा हुए माता पिताओं और बच्चों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की एक बात याद की, परिवार एक आईना है जिसमें ईश्वर खुद को देखते हैं। संत पापा लियो ने कहा, ईश्वर खुद को हमारे समुदाय में, हमारे परिवार में देखना चाहते हैं। ईश्वर आपके परिवार में मौजूद हैं। फिर उन्होंने पारिवारिक जीवन में पाए जाने वाले दो सबसे बड़े चमत्कारों के बारे में बातें की, जीवन देना और प्यार देना। उन्होंने कहा, मैं आप सभी को, आपके परिवारों को इस महान चमत्कार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। संत पापा ने परिवारों को प्रोत्साहित किया कि वे हर दिन खुद को ईश्वर का आईना समझें और यह फिर से जानें कि सिर्फ अपने लिए जीने की बजाय जीवन और प्यार देने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा, हमें मतलबी नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना जीवन दूसरों के लिए, परिवार में, दोस्तों के बीच और उन लोगों के लिए भी देना चाहिए जो अभी तक आपके दोस्त नहीं बने हैं। संत पापा लियो ने आगे कहा, आज शाम का हमारा यह समारोह भी ईश्वर के प्यार का आईना हो और प्रार्थना की कि परिवार वह खुशी, साथ रहने वाली खुशी महसूस कर सके जो सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं। अपना भाषण समाप्त करने के बाद संत पापा लियो घूम घूम कर परिवारों का अभिवादन किया, बच्चों को आशीर्वाद दिया, बच्चों को गले लगाया और उनके पास आने वालों से थोड़ी देर बातें की। उधर रविवार सुबह दक्षिण लेबनान के कई कस्बों में हुए इजरायली हमलों में कम से कम 4 लोग मारे गए। पीड़ितों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। कई लोगों के घायल होने की भी खबर है, जबकि बम धमाकों में खासतौर पर नबाती इलाका प्रभावित हुआ, जिसमें घरों और दूसरी इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल के मुताबिक यह हमला हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया था, जो उसके सैनिकों के कब्जे वाले इलाकों में इजरायली सैनिकों पर हुए थे। लेबनान से मिली जानकारी के मुताबिक नबाती अल फौका में 2 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। नबाती शहर के एक इलाके में 1 महिला और 1 बच्चे समेत 8 और लोग घायल हो गए। बमबारी की नई लहर दक्षिणी लेबनान में अन्य इसराइली हमलों के ठीक 2 दिन बाद आई है। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को निकासी की चेतावनी के बिना की गई छापेमारी में 4 लोग मारे गए और 23 घायल हो गए। इसराइली सेना ने कहा कि उसने हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को निशाना बनाया है। जून में अमेरिकी मध्यस्थता के साथ युद्ध विराम पर सहमति के बावजूद इजरायली हमले कभी नहीं रुके हैं। वास्तव में इजराइल दक्षिणी लेबनान में अपने द्वारा घोषित सुरक्षा क्षेत्र में काम करना जारी रखा है, जबकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर लेबनान सरकार पर दबाव बनाने के मकसद से तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया, जो अमेरिका की देखरेख में इजराइल के साथ सीधी बातचीत कर रही है।
उधर यरूशलेम के लाटिन प्रादी धर्माध्यक्ष ने विदिन योर गेट्स आपके दरवाजे के अंदर नाम की एक पहल शुरू की है जो अलग अलग धार्मिक परंपराओं और विषयों के विद्वानों और व्यवसायिकों को एक साथ लाती है ताकि वे पवित्र शहर के सार्वभौमिक मिशन पर सोच विचार कर सकें। आपके दरवाजों के अंदर यरूशलेम का सार्वभौमिक बुलाहट के लिए फोरम 7 सितंबर 2026 को यरूशलेम में शुरू किया जा रहा है। यह पहल यरूशलेम में नोटर डेम विश्वविद्यालय के एकेडमिक सेंटर के साथ भागीदारी में बनाई गई है और यह अलग अलग धार्मिक परंपराओं का अभ्यास करने वालों और एकेडमिक विषयों के विद्वानों को एक साथ लाएगी। यह फोरम शहर और बड़े इलाके में रोजमर्रा की जिंदगी की असलियत से जुड़ते हुए यरूशलेम के सार्वभौमिक मिशन की जांच करने की कोशिश करता है। इसके खोज के एरिया में यरूशलेम का ईश शास्त्रीय महत्व, शहर का सार्वभौमिक बुलाहट, संघर्ष और सुलह की भाषा और मजबूरी की स्थितियों में संस्था के सवाल शामिल होंगे। कार्डिनल पिज्जाबाला प्रवर्तकों की समिति के सभापति के तौर पर काम करेंगे और यरूशलेम में लॉन्च कार्यक्रम में इस पहल के लिए अपना विजन पेश करेंगे। इस समारोह में ऐसे विद्वान और व्यवसायी शामिल होंगे जो फोरम के प्रवर्तकों की समिति या सलाहकार समिति में काम करते हैं। उधर वाटिकन मीडिया के अंद्रेया तोर्नेली के साथ एक साक्षात्कार में लैटिन धर्म प्रांत के वीकर धर्माध्यक्ष इयाद टवाल इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक फिलिस्तीनी लोगों के लिए न्याय और शांति नहीं होगी, हम हमेशा संकट की स्थिति में होंगे। वे अपने देश जॉर्डन के हालत के बारे में बताते हैं। वाटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के नतीजों के बारे में बातें की। भौगोलिक रूप से जॉर्डन ठीक बीच में है। सरकार और राजा के साथ मिलकर हमने रोजमर्रा की जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश की है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्ट, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: वैटिकन रेडियो हिंदी प्रसारण है। आप सब को पिता का दिल आशीर्वाद और हमारा अभिनंदन।
0: मास प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना हैं, ताकि जीवन के लिए आवश्यक
2: चौका संदेश भक्ति गीत एवं आचार कार्यक्रम प्रस्तुत है सिस्टर मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर ग्रह मिंज। क्या पोपली चौथ में का संदेश भक्ति एवं समाचार कार्यक्रम होता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं अनुग्रह मिंज।

0: रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान पोप लियो 14वें ने ये के दो रात चिंतन किया जो ख्रिस्त आपसी प्रेम मिलने के लिए आमंत्रित हैं। पहला भ्रातृपूर्ण सुधार और दूसरा एक दूसरे को भाई एवं बहन की तैयार करना। वैटिकन संत पेत्रस महानगर के प्रांगण रविवार 6 सितंबर को लियो 14वें ने समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ देवदूत प्रार्थना के पूर्व ने विश्वासियों को संबोधित कर कहा।
1: Cari fratelli sorelle, buona domenica. La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione.
0: ईश्वरचंद जी इस रविवार की संविधि में घोषणा किया हम सोचने और कार्य के लिए एक मानदंड प्रदान है। उनके नाम पर हम पढ़ते हैं कि सभी आज्ञा का सार इनसे है। अपने पड़ोस को अपने समान करो। ने कहा
1: सान पाउलो इंतेसु क्वेस्टो पतो
0: सरलस एक प्रभावशाली छवि के द्वारा इस बिंदु पर जोर देते हैं जो प्रभु की प्राप्ति दिखाई देते हैं। वे लिखते हैं भी प्रेम का ऋण कर और किसी बात में किसी के ऋणी ना बने। यीशु ने हमें माफ मांगना और माफ सिखाया है। फिर भी ऐसा कर्ज है एक दूसरे के लिए निभाते हैं जो हमें गुलाम नहीं बनाता वह है आप प्रेम का कर्ज। हमें जो भी ध्यान देखभाल और अच्छाई मिले वह हमें स्वतंत्र जिम्मेदारी उठा के काबिल बनाती है। इस रविवार के सुसमाचार में ये हर ख्रिस्त समुदाय को आपसे दो तरीके हैं भाई जी के साथ सुधार के काबिल बने। संत पाप कहा कि यह आजु कला है जिससे अक्सर दिया जाता है जिस धीरे धीरे बढ़ने की जरूरत है। एक दूसरे से ईमानदारी से बात होता है पहले अपने सामने फिर अगर जरूरी हो तो दो तीन और लोगों के साथ और अगर आवश्यक हो तो अंत में पूर्णदार के साथ। इसका मतलब है सच्चाई का सा करना और सौ और चको आगे बढ़ने अवसर में बदलना। संत पाप ने कहा मेहनत करना और दूसरों की बुराई करना आसान है लेकिन उनसे कुछ नहीं होता और कई हालात बेकार होते हैं। सुसमाचार हमें वह स्वतंत्रता सिखाता है जो दया से

0: प्रेम करने के दूसरे राज पर प्रकाश डालते संत पापा ने कहा।
1: C'è poi un secondo modo di amare fraternamente.
0: भाइयों और बहनों की तरह एक दूसरे से प्यार का एक दूसरा तरीका भी है। इसके कारण जो हमारी प्रार्थना भी बदल देते हैं, वे एक समझ पहुंचने की सुध देते हैं। न सिर्फ तब नहीं जब कोई झगड़ा न, बल्कि थे जब से कोई वरदान मांग रहे हों। प्रभु कहते हैं, यदि पर तुम लोगों से दो व्यक्ति होकर कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें मेरे के पिता की से निश्चय ही मिलेगा। यज्ञ हमें सुझाव देती है कि हमारी इच्छाएं और उम्मीदें जैसी हो सके और प्रसे हम एक में बढ़ सकते हैं। विश्वास हर कोई अकेला महसूस करता है और उसों पर शक करता है, उन्हें अजनबी दुश्मन समझ सकता है, लेकिन पासे भाई बहन बनते हैं, मिलजुल कर रह सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे को माफ कर सकते हैं और प्रभु में एक दूसरे को सुन सकते हैं। तब मातम से प्रार्थना करने मान करते हुए पापा ने कहा,
1: Chiediamo a Maria che dopo l'annuncio dell'angelo raggiunse tutta la cugina Elisabetta.
0: ये हम मातम से प्रार्थना करें जो दूत आकर शीघ्र से अपनी कुटुंबित के चली गई थी, कि उन्हें गर्भ धारण करने की खुशी एवं अभिनय साझा करें, हमें श्री प्रेम के साथ आनंद में चुकाना सिखा। इतना कहने के बाद पापा ने भक्त सब के साथ दूत प्रार्थना का पाठ किया तथा को अपना प्रेम आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciabit Maria
2: et conce Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: देवदूत प्रात के उपरांत संत पापा ने दुनिया भर की विपचनाओं की याद की और पीड़ितों को अपनी सहमति प्रदान की। सबसे पहले उन्होंने यूक्रेन के दोष नागरिक को भारी मन से किया जो लड़ने के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा,
1: Animo addolorato, ho seguito notizie di violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina.
0: मैंने बहुत भारी मन से इनकी कई शहर और नागरिक संस्थाओं पर गत दिनों हुए हमलों की खबर सुनी है, जिनमें बेगुनाह लोगों की मौत हुई है। रूस ने यूक्रेन पर हमला दिए हैं, जिसके शिकार आम नागरिक हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में रूसी मिसाइल ड्रोन हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं, में ज्यादातर नागरिक हैं। हालांकि रूस का दावा है कि हमले मिलिट्री को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हाल के हमले बड़े आबादी इलाकों में अपार्टमेंट, प्राइवेट घर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट रास्तों को बंद कर दिए हैं। उप ने यूक्रेन के लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा,
1: Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione.
0: मेरा दिल लोगों की तकलीफ से दुखी है, सालों से पीड़ा डर में जी रहे हैं। मैं एक बार फिर आता हूँ, हिंसा खत्म जाए, तबाही रोकी जाए, बातचीत और शांति के लिए दिल खोला। फिर उम्मीद बताते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि हाल के दिन बातचीत फिर से शुरू करने की कोशिश ठोस नतीजे पर आएगी और कूटने का रास्ता खोलेगी। उन्होंने लोगों के लिए प्रार्थना करने का आह्वान देते हुए कहा, आइए हम उसे प्रार्थना कि दुनिया के सभी झगड़ों पर दबाव प्रबल। तत्पर संत पापा ने रोम तथा विभिन्न देशों से आए सभी तीर्थयात्रियों का आदन किया और यहाँ आने का धन्यवाद दिया। अंत में उन्होंने सभी शुभ रविवार मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: Una buona domenica!

वाटिका रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। धन्यकुमारी मरियम के जन्म त्योहार के एक दिन पहले आज 7 सितंबर को संत पियो 14 में रोम से करीब किलोमीटर दूर अगुस्टीनियन के पसंदीदा पवित्र स्थान सानों में भली सलाहकार मां मरियम के घर में पवित्र समारोह अनुष्ठान करेंगे। संत पापा अध्यक्ष बनने दो दिन बाद 10 मई 2020 को वहां पे थे। जिसानों के प्यासा दिल पाच शाम 4 बजे संत के आने की है। वे एक पापा मुख श्राइन पहुंचेंगे, रास्ते में भक्तों को आशीर्वाद देंगे। इसके बाद महागिरजा घर सामने संत पापा का स्वागत स्थानीय अधिकारियों अगुस्टीन समुदाय अबोली और पत्रीना धर्म के धर्माध्यक्ष मौरो पर निजानी करेंगे। जैनासान खुशी का माहौल है। लोग सब्री से संत पियो 14वें के आने का इंतजार रहे हैं, जो छोटे से शहर अगुस्टीन परिवार की सबसे प्यारी जगह से एक है। और संत पियो 14वें शनिवार 5 सितंबर वाटिकन यान में होने वाला सालाना पारिवारिक समारोह के दौरान सैकड़ों कर्मचारी और उनके पारों से मुलाकात की। सचिव प्रांगण में इकट्ठे माता पिताओं और बच्चों का अभिवादन करते हुए पापा ने जॉन पॉल द्वितीय की एक याद की, परिवार एक आईना है जिसमें ईश्वर को देखते हैं। संत पापा लियो ने कहा, ईश्वर खुद को हमारे समुदाय हमारे परिवार में देखना चाहते हैं। ईश्वर आपके परिवार में मौजूद। फिर उन्होंने पारिवारिक जीवन पाए जाने वाले दो सबसे चमत्कारों के बारे में बातें की, जीव देना और प्यार। उन्होंने कहा, मैं आप सभी को आपके परिवारों इस महान चमत्कार के लिए देना चाहता हूँ। संत ने परिवारों को प्रोत्साहित कि वे हर दिन खुद को ईश्वर का आईना समझें और यह फिर ने सिर्फ अपने लिए जीने की बजाय जीवन और प्यार देने का मतलब है। उन्होंने कहा, हमें मतलब ही नहीं चाहिए बल्कि अपना जीवन दूसरों के परिवार दोस्तों बीच और उन लोगों के लिए भी देना है जो अभी तक आपके दोस्त नहीं बने हैं। संत पापा ने आगे कहा, आज शाम का हमारा यह समारोह भी ईश्वर के प्यार आईना हो और प्रार्थना की कि परिवार खुशी साथ रहने वाली खुशी महसूस कर सके जो सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं। अब भाषण समाप्त होने के बाद संत लियो घूम कर परिवादन की, बच्चों को आदि गले लगाया और उनके पास आने वालों से थोड़ी देर बाकी। रविवार सुबह दक्षिण ले कई कस्बों में हुए इजरायली हमलों में से कम 4 लोग गए, दो महिला ही शामिल हैं। कई लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि बम धमाकों खास तौर पर नबाती इलाका प्रभावित हुआ जिसमें घर और दूसरी इमारतों को नुकसान था। इसरो के मुताबिक हमला हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया था, जो उसके सैनिकों के कब्जे वाले इलाकों में इजरायली सैनिकों पर हुए थे। लेबनान से जानकारी के मुताबिक नबाती अलौका में 2 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। नबाती शहर एक इलाके 1 महिला और 1 बच्चे 8 लोग घायल हुए। बम्बई की

लहर शख्स ने लेबनान में अन्य इसराइल हमलों के ठीक दो दिन बाद आई है। लेबनानी स्वास्थ्य के अनुसार शुक्रवार को निकासी की चेतावनी के बिना की गई छापेमारी में 4 लोग मारे गए और 23 घायल हो गए। इजरायली सेना ने कहा कि उसने हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को निशान बनाया है। जून में अमेरिकी मध्यस्थता के साथ युद्ध विराम सहमति के बाद इजरायली हमले कभी नहीं रुके हैं। वास्तव में इजरायल दक्षिणी लेबनान में अपने घोषित क्षेत्र में करना जारी रहा है। जब हिजबुल्लाह ने इजरायल पर लेबनान सरकार दबाव बनाने के मकसद से तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया, जो अमेरिका की देखरेख में इजरायल के साथ सीधी बातचीत कर रही है। उधर यरूशलेम के लैटिन प्रांत धर्माध्यक्ष ने विदिन योर गेट्स आपके दरवाजे अंदर नाम की एक पहल शुरू की है, जो अलग अलग धार्मिक परंपराओं और विषयों के विद्वान और नायिकों को एक लाती है, ताकि वे पवित्र घर के सार्वभौमिक मिशन पर विचार कर सके। आपके दरवाजे यरूशलेम का सार्वभौमिक बुलाहट के फोरम सितंबर 2026 को यरूशलेम में शुरू किया जा रहा है। यह पहल यरूशलेम में नोटर डेम विश्वविद्यालय के अकादमिक सेंटर के सहभागिदारी में बनाई गई है और यह अलग अलग धार्मिक परंपराओं का अभ्यास वालों और अकादमिक विषयों के विद्वानों को एक साथ लाएगी। फोरम शहर बड़े इलाके में रोजमर्रा की असलियत जुड़ते हुए यरूशलेम के सार्वभौमिक मिशन जांच करने की कोशिश करता है। इसके खोज के एरिया में यरूशलेम का ईश्वरीय महत्व, शहर का सार्वभौमिक बुलाहट, संघर्ष और की भाषा और मजबूत की स्थितियों में संस्था के साल शामिल होंगे। कार्डिनल सबाला प्रवर्तकों की समिति के सभापति तौर पर काम करें और यरूशलेम में लॉन्च के क्रम में पहल के लिए अपना विजन पेश करेंगे। समारोह में ऐसे विद्वान और व्यवसायी शामिल होंगे फोरम के प्रवर्त समिति या सलाहकार समिति में काम करते हैं। उधर भारतीय मीडिया के अया तोरनेली का एक साक्षात्कार में लैटिन प्रांत के विक्रमाध्यक्ष टवाल इस बात पर जोर देते हैं कि जब तक फिलिस्तीनी लोगों के लिए न्याय और शांति नहीं होगी, हम हमेशा संकट की स्थिति में होंगे। ये अपने देश जन के हालत बारे में बताते वाटिका डिया के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के नतीजे बारे में बात की। भौगोलिक रूप से जोरदार ठीक बीच में है। सरकार और राजा के साथ मिलकर हमने रोजमर्रा जिंदगी को सामान्य बनाने की है। इसी के साथ रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।